Chico. एउटा कार्यक्रम लगाइदिउँ न, के लगाइदिने, के लगाइदिनु, कार्यक्रम राखे पनि के छ र?

0: के अपनी आकड़ को कृपया अपनी जेब में रखें।
1: ओ
0: बता देंगे तना तेरे दोस्त तेरे मित्र, या चार गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र, यार बच कर निकले आए जितना बच सके, अपनी आकड़ में गाल गहरा बोझ में रखें।
2: राजेश
0: के अपनी आकड़ को कृपया अपनी जेब में रखें।
1: ओ
0: बता देंगे तना तेरे दोस्त तेरे मित्र, या चार गाड़ी नंबर मतलब बदमाश।
2: राजेश,
3: राहुल,
2: कार्तिक,
3: नितेश,
2: तेरे को नहीं खिलाएंगे, खेलना आता नहीं है, चल घर।
4: A few moments later.
5: रुको, मैं भोलेनाथ हूँ, मुझे अंदर।
6: कोई बात नहीं,